पुराण सिमरत महंद एक सतसियर सूर नखियत्र मह एक बाणी प्रव की सबको बोलै आप अडोल न कबू डोलै सर्व कला कर खेलै खेल मोल न पाइय गुण अमोल सर्व जोत महिंदा की जोत ता रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तन मैं एहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संजना कै हृदय सब धर्म संजना सुने सुब बचन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता तस्किए रैत सत बचन साधु सब कै जो जोए जो

सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेताए फल तस जन कह मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने ये निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गात होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते

नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृपाले नमस्त्वं रूपे नमस्त्वं अनुपे नमस्त्वं अपेखे नमस्त्वं लेखे नमस्त्वं काये नमस्त्वं जाये नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं नामे नमस्त्वं ठामे नमस्त्वं कर्मं नमस्त्वं धर्मं नमस्त्वं नामं नमस्त्वं तामं नमस्त्वं जीते नमस्त्वं पीते नमस्त्वं बाहे नमस्त्वं टाहे नमस्त्वं नीले नमस्त्वं नादे नमस्त्वं शेदे नमस्त्वं गादे नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं उदारि नमस्तं अपारि नमस्तं सोएकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं भूते नमस्तं अजूपे नमस्तं नृकर्मे नमस्तं नृपर्मे नमस्तं नृदेशे नमस्तं नृपेशे नमस्तं नृनामे नमस्तं नृकामे नमस्तं नृताते नमस्तं नृकाते नमस्तं नृतूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं नृतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभुगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं गम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमज्वे नमस्तस्तज्वे अदिशं देशे नमस्तं अपेशे नमस्तं नृतामे नमस्तं नृभामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्देव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्दयाले नमस्तं अमरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं गिरारं नमस्तं गिरतारं नमो सर्वतन्दे नमो स्वबन्दे नमस्तं नृसाके नमस्तं नृबाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्त्रागे नमस्तं सोहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोगजोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है नाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है नृलंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबह है अगह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथ नृसंगी परमार्थे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनाम्य समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ती में भूते कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरम परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धि नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धि नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी परमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगेश्वरम परम जोगते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे

कृसय कृसय भगवती संतवे प्रसाद कहते कि आशिज दिसह के आपिज पिसह के आगन कर्मय के आपन परमय के आपिज लोकय के आदित सुख है के अवधूत भरने के बेभूत करने के राज प्रभा है धर्म तुझा है के आशोक भरने के सुरभा परने कि जगदंग रीति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपोन रूप है कि आदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग महीन ने के कैदी ने कि रोजी रजा कर रही मेरे हक है कि पाक भी ऐब है कि गैब लु गैब है कि अफुल गुना है कि शाहान शाह है कि कान कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है सर्वत्र दान्य है सर्वत्र गौण है सर्वत्र पौन है सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाह हो के सर्वत्र भाव हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधानी है सर्वत्र जापी है सर्वत्र थापी है सर्वत्र पान है सर्वत्र मान है सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वंग कलीमे के परम फहीमे के अकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्नुल वजू है तमाम रुजू है हमें सुलसला में सली खत्म होदा में गनी मुल से कस्ता है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमा मैं रजूल निदान हरी फुलाजी मेरे या एक यकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है अभंग है अजी जुल निवास है गनी मुलखिराज है नरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है आगाध है अनूप है अंगाध रूपे अनाथ स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपरकम त्रिपादे अगंजे अगाधे सुपंग सर्व भागे सुसर्वानुराग त्रिपुत स्वरूप है अशज है अशूत है किनरकम प्रणाश है पृथ्वी प्रवास है निरोगत प्रवाह है सदा वंग सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोगत अनूप है निरोगत सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोगत अनूप है चचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है।

असंभ है, अगम्भ है, अनीन है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंत्रम सर्वंयोक्ता सर्वंमुक्ता प्रसावलशन त्वय प्रसाद। नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं स्वरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंत है प्रसाद। के जा हर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सुलो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दिहंद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल अजमा है अमीकुल अमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमान है के अचलन प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलन अनांग है के अमितो अपांग है मध्य पार्श्व

0: सर्वंपर हैं, सर्वंकर हैं, सर्वपाश्य हैं, सर्वनाश्य हैं, करुणा करें, विश्वंपर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगते सुने, ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणा करें, अजपा जापें, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अमृता अमृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणीकृत तरणीतृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिप्तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात शांत
1: नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे

ज्ञान ज्ञान ने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रियनादम्य भूते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बांके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयावल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुलया नामे समस्तुल निवासे निरकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विभूते

माया अगन सभी को जे ही करते खेल रचाया। जाओ तुस भाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया, लिप छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। माया जित हर विसरे मोह उपजै भाव दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हार वाप मुल्क है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विटो रहे लोक बिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनू सिर सौंपिए विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसै मनवाए। हर आप अमुल्क है भाग तिना के।

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।

तत् सब को निवे आप को पर को निवे न को धरत राजू तो लिए निवे सो गोरा हो अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा हे सीस नवाया क्या थी है जर देख।

0: काज संपूर्ण हो जावे, रहे कमीना कोई काज संपूर्ण हो जावे।
1: शुक्र गुजार।

करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेक अंतर मल माया छप सुनाई कछ करे छपाया।

0: चुक्ता पद्म सुभजन गर पाए रूप सत जाका सदे स्थान पुरुष सत केवल प्रदान करतु सात सा जाकी बाणी सतपुर समाए समाणी सात कर्म जाकी रचना सात मून सात सात उदपात सत करणी धर्मा धर्मली जेह बुझाए दसे साबली
1: सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा के हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोय नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत

जय स्वरूप केवल जगदीश तैशल शिदर लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह पूकम तृप्तावै कन करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जावे अपनी सोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कलाया पह प्रवीन तह बेद कतेव कहा कौचीन जावे अपने आप आप उर तारै तव सगन अप सगन कहा विचार जय अपन उच्चापन आप मेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानहु आप

पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जानै आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतिपालै जीअन बहु भात जो जो रचियो सुत सहत आत जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करहै हर के गुण गाए मन अंतर बिसवा

हुक्म बूझ परम पद पाई इसते उपर नहीं विचार जाकै मन वसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अन दिन पूजह गुर के पैरे लोक सुखिये पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपह मिले साध संग मिलकर हो आनंद गुण गावह प्रभ परमानंद राम नाम तत्कर हो विचार दुर्लभ दे का करो उदार अमृत बचन।

ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला गा मीठा सगल समिग्री एक सकाट माहे अनकरांगना ना दृष्टाहे नाउ निधि अमृत प्रभ का नाम देही महिष का विश्राम सुन समाधन हत नाद कहन न जाय चर्ज विस्माद